याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कन्यमरियतुमन्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

0: हालेलुया एविट जीवमान सत्वयान सतर देना गायना करबिन सिटियाउद सिडिन्नाउद मतु सिडिन्नाउद एकम जीवमान देवियान वहांसेट सियलु कौरवे वेवाई केन
1: सोदेशे पालुतु
0: एविट वेडी महल्लो विसी हतर देना तुन्वन स्वर्गे सियोन ही वहांसेगे सिंहासने इदिरिये सिडिन वैदि महालन विस्यातर देना स्वकीय किरुलु बिमदामा देवियां मार्सिद्रिये वैंद वैटे पिन ओब सदा काले ट गाउरवे लवान सुदु सुदेवियां मार्सिद्रिये